अपना जान मुझा प्रत परिया चुन चुन सतर हमारे मरिया देख तेग जग मैं दो चल राखे आप मुहे और नांदले।

ला पंजवा अंतर गोरे आराधना जिहवा जाप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पहाट कीरत की, गुर रामदास राखह शरण आई, सो काहो टल गुर सेवी अहन सुसहज सुभाई, दर्शन परसिय जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसमदी दूर अरसहु कुरसहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया, सतनाम

जुग जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक सरवरे कायनात वालगी कुल आलम मुजस्मा आबे हयात तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सरबत माई भाई तंता दे जोग वड भागे हो आओ मन बिरते एकाग्र करिए संध्या दे सजे हुए दीवाना दे विच सोधर है राज साहिब जी दी बाणी आरती आरता शब्द कीर्तन लड़ीवार गोरे इतिहास दी कथा विचार सरवण करके लाहा प्राप्त कर रहे सी। गुरु चरणा च साडी ते तुहाडी हाजरी लगी फतेह दा सिमरन करो आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सचे पातशाह दे पावन चरणा विच हाजरी भरदिया गुरु की संगत वालों बेंत माया अरदास करवाई जा रही है सतगुरु जी किरत कमाईयां सफलियां करन कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत पातशाह गुरमत अनुसार सरबत माई भाई दियां भावनावां संपूर्ण करके अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्शिश करन। एक बार सारी संगत हाथ जोड़ के आखो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। आप जी ने सरवण कीता पिछले दीवाना दे विच के सिख सल्तनत दे पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं दिल्ली दी धरती उत्ते ले जा के को को के तसीहे दे के शहीद कीता गया। 740 जिउंदे सिंह दिल्ली दी धरती उत्ते 100-100 करके रोजाना कतल कीते गए। सिख लीडरशिप जेड़ी सी आगू जेड़े सन उन्हां नूं शहीद कीता गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर दा 4 सालां दा पुत बाबा अजय सिंह शहीद होया उदियां आंदरां दा हार बाबा बंदा सिंह बहादुर दे गल पाया उदे खून दे छट्टे बाबा बंदा सिंह बहादुर दे चेहरे उत्ते मारे उदा दिल बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मूंह च तुन्निया गया। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नहीं डोलिया फिर उदियां अखां कढ़ियां गईयां। बादशाह फरक्शियर ने आखिया बंदा सिंह केड़ी मौत मरना चाहुंदा है तूं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने आख्या जिहड़ी तैनूं चंगी लगदी है जिहड़ी तू अपने वास्ते प्रवान करदा उसे मौत मैनूं मार। अखां कढ दित्तियां हथ वढ दित्ते पैर वढ दित्ते जमूरा गर्म कर करके उहदे जिस्म नालों मास दियां बोटियां तोड़ियां गईयां। आखिरकार टोटे टोटे करके उहदे बचे हुए तन दे सिर कलम करके बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं चेते रखो शहीद कर दिता गया। अजे भी फरक्शियर दा मन नहीं सी भरिया उन्हें ऐलान करवाया वो कहिंदा कि पंजाब दी धरती उत्ते सिखां दा समूहक कतलेआम कीता जावे। दिल्ली दे तख्त तो ऐलान होया कोई गुनाह कोई दोष नहीं वेख्या जाना वेख्या ए जावेगा कि एदे मुंह ते दाढ़ी है एदे सिर ते जूड़ा है ए नानक प्रस्त है ए गुरु नानक नूं मनन वाला है। उन्हें आख्या जे हिंदू अपनी जान बचाउणा चाहुंदे ने हिंदू अपनी

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

साध संगत दी जिस समय दे विच साध संगत दी साधु दी निंदिया हुंदी है, ए गल कही जांदी है कोई संत नहीं है, कोई साधु नहीं है।

0: संतन साथ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखहो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाय संसार ते राख्या गोपाल रहाओ आशा परम विकार मोह।

मन खोटहर खोटहर पाठ भी पोला ही बोलना कसना नहीं ज्यादा जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया है मन खोटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा उदमादा पाठ भी दरम्याना ही करना ज्यादा नहीं कसना। हांजी।

0: अछल अछेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान।
1: अछल एदा ही पोला ही अछल छछे ते ज्यादा जोर नहीं देना जिवें पोला उचारण कीता एड़े नूं अगेतर ला के अछल अछेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान।

0: रामचंद की लस्टिका जिन मारिया रोग।
1: गुरपूरा हर जापिय नित कीचे भोग, साध संगत कै वारण मिलया संजोग। जिस सिमरत सुख पाया।

शुद्ध है जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया है। कोट जन्म की तृष्णा निवारी सरूपां दे विच निवरी पाठ वावे दे कन्ने तो बिना लिखिया मिलदा है पर शुद्ध वावे दे ना कन्ने दे सहत है। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर कै बचन जपे हर जाप।

पातत पवित एक निमक जपाइया आचरज सुनियो प्रापत भेटोले संत चरण चरण मन लाइय केत विधिया केत संजम पाइय कहो सुरजन केत जुगती त्याय रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा ओह तिस की लई लई फुन जाइय नानक सरन सरन सुख सागर मोह टेक तेरो एक नाइय बिलावल महला पंजवा संत सरन।

0: लाओ डहक है जौ पेखत ही संग सुनता ऐसो जान पहे मन आनंद आन न बियो करता कहो नानक गुर पहे दयारा हर रंग न कबहू लहता मिलावल महला पंजवा निंदक ऐसे ही चार परिय
1: साध संगत जियो

तान तन जोबन चलत गया। राम नाम का भजन न कीनो, करत विकार निस भोर भया रहाओ। अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया। मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत नह परी दया। महा

0: मुकरन पाठ कस के करना, मुकरन नहीं करना, मुकरन इकट्ठा ही।
1: बड़ प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो, कोट अघा तेरो नाम हरन, हमरो सहाओ सब

गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरै हर की जया। बिलावल महला पंजवा बिन भय भगति तरन कैसे करो अनुग्रह पतित उदाहरण राख स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता सुआन जैसे औध बिहावत अधिक मोहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे। सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिस।

0: ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਗਣਾ। ਮਨਮੁਖ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਭੈ ਨਿਰਾਸ, ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸਨਿਆਸਾ, ਮਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਉਜਾੜ ਦੇ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਮਝ। ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ, ਬਨ ਜੈਸਾ ਹੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ? ਸਿਰਫ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਨਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਘਰ ਦੇ ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਜਾੜ ਸਮਝ ਲੈ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਜਿਹਾਂ ਬਚਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਘਰ ਉਜਾੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ ਉਦਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਜਾੜ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਟੋਟਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਦਰਖਤ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ। ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਉੱਚੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹਦੀ ਸਰੋਤ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਪੀ ਹੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਬਦ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਨ ਗੁਰ ਵਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ, ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ, ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ। ਕੱਲ ਇਸ ਪੀੜ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੋਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੋਆ ਕਾਨ, ਪਾਉ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੀਰ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨੂੰ ਛੋਏਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मन स्रोता बने, जबान वक्ता बने। जबान आखे वाहे गुरु वाहे गुरु, ये वक्ता बने, मन स्रोता बने। पर होंदा कि ये जबान भी वक्ता बनती है, मन भी वक्ता बनता है। मन हर वक्त बोलता है, नहीं चुप करता, ये सुनता ही नहीं। मन दी सुनन दी आदत ही नहीं, ते जद सुनता ही नहीं तो शब्द मन का हिस्सा ही नहीं बनता। उखड़े उखड़े लोग अक्सर सत्संग देच बैठे होंदे ने, उखड़ उखड़ के लोकी पाठ करते हैं, सुनना कठिन है। अगर कोई सुन लवे, महाराज कहिंदे ने, दोहरा दें, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कबीर कहिंदे ने, गुरु दा शब्द मैं की सुनिया, गूंगा हो गया। मैं मिथ्या नहीं बोलदा, कौड़ा नहीं बोलदा, फिका नहीं बोलदा, व्यर्थ नहीं बोलदा, जबान तो गूंगा हो गया। जिन्नी पीड़ा हुई है तीर दे लगन नाल, मैं इनो भी बयान नहीं कर सकदा, गूंगा हो गया। पर जितना रस आ रहा है, इस रस नो भी मैं बयान नहीं कर सकदा, गूंगा हो गया। इको ही पीड़ा है, भगत चाहते ने बनी रहे बनी रहे। बाकी हर पीड़ तो मनुख छुटकारा चाहता है। जरूर थोड़े विचों जड़े कोई अभ्यासी होंगे ते शब्द चोट कर गया होगा, उदा एक अनुभव होंदा है, परमात्मा तो नहीं मिलता ते ना सही, अपनी प्यास बनी रहन दे, अपनी तड़प बनी रहन दे। उदी ए उमंग पैदा हो जाती है, उदी ए तड़प आती है। इनू एक सूफी अमीर खुसरो इंज बयान करता है, या रब दुआए वसल ना हर गिस कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। हे प्रभु हे खुदा, हर वक्त मैनू तड़पण दे, दुआ करन दे, तेरे अगो मैं फरियाद करदा रवा, नहीं मिलदा ना मिल, कम से कम मैनू फरियाद करन दे। इस फरियाद दे च भी रस है, इस फरियाद दे च ही आनंद है। जद कदी कोई गहराई नाल अरदास करता है, प्रार्थना करता है, यकीन जानो उसे च भी आनंद है, उसे च भी रस है। इको एक पीड़ा है जेदे च महारस है। कबीर कहिंदे ने, मैं गूंगा हो गया, नहीं बयान कर सकता। गूंगा हुआ बावरा, बावरे तो मुराद पागल इत्थे नहीं है, बावरे तो मुराद भोला, भोला हो गया। भोला मनुख अंदरों बाहरों एक होंदा है, ये मैं अर्ज कर दें। चलाक मनुख बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। जिन्हों बाबा फरीद इंज कहिंदे ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। औरंगजेब भी दो वक्त कुरान की तलावत करता है, पांच वक्त नमाज पढ़ता है, जुमा रात नू जकात देंदा है, रमजान दे महीने रोजे रखता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, तोरा मन नादानम के यजदा शनास, श्री मुखवाक पातशाही दसवें, तू खुदा शनास नहीं है, पखंडी है, झूठा है, फरेबी है। तेरा नमाज पढ़ना भी झूठ, तेरी कुरान दी तलावत भी झूठ, तेरे रमजान दे महीने च रखे रोजे भी झूठ। तू रामन नदानम के यजदा शनास, बराम इज्जत ओका रहा दिल खराश। तू ओ कम कीते ने जेदे नाल लोगां दे दिलां नू खराश पहुंची है, तू लोगां दे दिलां नू चोट पहुंचाई है। रब नाल जुड़िया होया मनुख लोगां दे दिलां नू जोड़दा हुंदा, तोड़दा नहीं आउंदा। तू ते कदम कदम दे उत्ते दिल तोड़े ने, तू पखंडी है, तू झूठा है, चलाक है, बाहरों कुछ होर पेश करदा है अपने आप नू, अंदरों कुछ होर। हमो मर्द बायद शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दरदा हने दिगर। असी उसनों ही मर्द मनदे हां, मनुख मनदे हां, जो जबान दे चे ओही दिल दे चे, जो दिल दे चे ओही जबान दे चे। तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे च कुछ होर है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे है, ये कच्चे है। चलाक मनुख बारों कुछ होर आंदा है, अंदरों कुछ होर आंदा है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਛੜ ਜਾਏਗਾ। ਭੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਪਛੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗਰ। ਉਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਰਾ ਭੋਲਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦ ਜਾਂ ਫਿਦਾਏ ਆਂ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਸ਼ ਦਿਲਸ਼ ਯਕੇਸ਼। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਦਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਗਊ ਤੂੰ ਗਊ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੂੰ ਖੋਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੋਤੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਖੋਤਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਗਊ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੂੰਗਾ ਹੂਆ ਬਾਵਰਾ, ਬਹਿਰਾ ਹੂਆ ਕਾਨ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੰਨ ਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੱਭੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪਾਉਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਬਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਚੰਚਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਤਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਚਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲਤ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਮਨ ਭਈ ਉਮੰਗ, ਗਸ ਚੰਦਨ ਚੋਆ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧ। ਪੂਜਨ ਚਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਠਾਏ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਇਓ ਗੁਰ ਮਨ ਹੀ ਮਾਏ। ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਜਦ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਗਲਤ। ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। पहले किवें शुद्ध हो जाएगा, बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा। बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल भरी जे जियो, इतने मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कबीर कहिंदे ने पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण, ऐसा बाणी दा बाण लगया पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो ठीक ही कीता होगा, जरूर इना भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, कहिंदा जिहड़ा मेरा पैर टूट गया है ना, इस टूटे पैर दा मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इसका एहसान मन रहा जो मेरा पैर टूट गया है। हद हो गई, पैर टूट गया ते टूटे पैर दा एहसान शुकराना पिया करदा। अगे दसदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करा मैं बोल नहीं सकदा, गूंगा समझा नहीं सकदा। बिसम बिसम बिसमे ही भैया लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक सन तन रस आइये ज्यों चाक गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल दे च रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो गीत है, इनू हर सांस ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है जिदे वास्ते विशेष वाजा चाहिदा है, विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा, पहले दिल दी बणतर बनानी पैंदी है सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नू बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखदे आं, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जेदा नां सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखदे आं, इक्को दिन एक लाश देखी हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखदे आं, ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले असी 90 साल दे असी भी देखदे आं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखिया, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहिंदे हिंदी संवेदना, ऐसे मनुख दे अंदर संवेदना बहुत आउंदी है, हर गल नू छोटी दी छोटी घटना नू भी बहुत वड्डे रूप दे च महसूस करता, संवेदना। असी भी देखते हैं बुढ़िया नू, असी भी देखते हैं बीमारा नू, खुद भी बीमार होंदे हैं, असी भी मुरदिया नू देखे आवेगा, इक्को ही दफा देख के चोट लग गई। या ते अपनी अकल इतनी महान होवे, मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए, बहुत वड्डा धनाढ़ सी दिवालिया हो गए। बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है। बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा। ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होने दे निराश होने दे तीन कारण ने। प्रथम गुरु दा शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे श्रोता होवे। दूसरा अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा संसार तो कोई दुख बहुत वड्डे रूप में चोट कर जाए। हुण मैं इसनु इस तरह बयान करा, जो अजे तक पूर्ण तौर ते निराश नहीं उदास नहीं, ये कोई गहरा स्रोता नहीं कि इनू शब्द ने चोट कीती होवे। दूसरा ये कोई इतना अकलमंद भी नहीं गुस्ताखी माफ कि इनू अपनी अकल ही चोट कर जाए। तीसरा अजे संसार तो भी इसनु कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, नहीं ते मनुख उदास हो जाता है निराश हो जाता है। प्रथम सत्संग विच आउंदे आउंदे एक दिन शब्द चोट कर गया, उदास हो गया निराश हो गया। अकल तो चोट खा के उदास हो गया निराश हो गया। अकल इतनी महान, संसार छोटा हो गया, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। चलो इहदे संबंध विच मैं कुछ बोल थोड़े सामने रखा। जैसे महाराज कहिंदे ने आवन जान एक खेल बनाया, अज्ञाकारी की नहीं माया। बहुत महान बारीक बीन मनुख नो सब तमाशा प्रतीत होंदा, खेल कुछ भी नहीं। कितने लहरां बन रही ने मिट रही ने बन रही ने मिट रही ने, संसार बन रहा है मिट रहा है, मनुख जम रहे ने मर रहे ने, जीव जम रहे ने मर रहे ने, तमाशा खेल। अकल महान होवे मनुख छेती उदास हो जाएगा निराश हो जाएगा, अकल तो चोट खा के। इस संबंध च भी मैं गालिब दी एक नजम थोड़े सामने रखा। वो कहिंदा है बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की ये बच्चियां दा तमाशा, बच्चियां दे खिडौने और कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। तिफल बच्चे नु कहंदे ने, इतफाल बच्चियां दी जमा बहुवचन। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, सारी दुनिया की है छोटे बच्चियां दा तमाशा, खिडौणिया दी खेड। बाजीचा है इतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। दिन रात ए बच्चियां दा तमाशा हो रहा है, सवेरे खा लिया शामी खा लिया फिर सौ गया फिर दूजे दिन फिर वही कुछ कीता है जो कुछ रोज करते हैं, सब कुछ रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, पुनरुक्ति चल रही है। एक खेल है औरंग सुलेमां मेरे नजदीक, तख्ते सुलेमां नहीं सिंघासन, जेदे लई दुनिया कितने पापड़ बेल दी है। कोई पिंड दा चौधरी बनना चाहता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना, कितने पापड़ लोकी बेलते हैं। कहिंदे बच्चियां दा तमाशा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। एक खेल है औरंग, औरंग तख्त नू कहंदे ने, वड्डा तख्त उनू औरंग कहंदे ने, ऐ छोटा तख्त इनू मसनद कहंदे ने। मसनद गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 प्रचारकां नू ए मसनद बख्शिश कीती सी, मंजियां बख्शिश कीतियां सन। पंजाबी च असीं उन्हां नू मसंद कहंदे आ, फारसी दा लफ्ज़ है शुद्ध मसनद। ए मसनद है जिस ते धन गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश है, इनू फारसी दे च औरंग कहंदे ने। वड्डा तख्त जिस ते बादशाह बैठे औरंग, छोटा तख्त जिस ते अहलकार बैठन मसनद। शाहजहां दा लड़का मयोदीन प्यो नू जेल दे च पाके ते तीन भरावां नू मार के जिस दिन सिंघासन ते बैठा है, उन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। नाम वैसे उसका मयोदीन से, शायद आपनों पता होवे आदकाल तो कवि लोग गुणी लोग दार्शनिक फिलोसफर राजे महाराजे बादशाह अपना तखल्लुस रखते रहे। तखल्लुस का मतलब है खास नाम, हिंदी च कहिंदे उपनाम, कोई उपमा है गुणात्मक नाम, कोई गुण ने तो गुणात्मक नाम रखे है, तखल्लुस रखे है। जैसे हुमायूं का लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है उन्हें अपना तखल्लुस रखिया अकबर। अकबर का मतलब है सब तो वड्डा, ताही मुसलमान कहिंदे ने अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने अपना लकब रखिया जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन ही सब तो वड्डा है। इत अकबर उसका तखल्लुस है। अकबर का लड़का शाहजादा सलीम जो जोधा बाई की कुख तो पैदा हुई सी, जोधा बाई राजा मान सिंह वालिए जयपुर की भैन सी, ये राजपूत अपने धी भैं के डोले मुगलों नूं देण लग पए सन, जिहदी अगां चल के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मुखालफत की। राजा मान सिंह की भैन जोधा बाई ए बेगम से अकबर दे इहदी कुख तो पैदा होया शाहजादा सलीम, वड्डा होके जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का मतलब है सारा जहान मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी च, जहांगीर। इसने गुरु अर्जन देव जी नूं शहीद किया, कल गुरुपुरब तुसी मनाना है। इसने ही तरह तरह के तसीहे ढाए, इसने ही बहुत वड्डा जुल्म किया। दोगला से जोधा बाई का लड़का से अकबर का लड़का से तखल्लुस रखिया जहांगीर। जहांगीर का लड़का शाहजादा खुर्रम वक्त पाके जब सिंघासन ते बैठा है तखत ते बैठा है फिर इन्हें अपना तखल्लुस रखिया शाहे जहां। शाहजहां सारी दुनिया का बादशाह, निरा हिंदुस्तान का नहीं। ते शाहजहां का लड़का मुइनुद्दीन जिस दिन सिंघासन ते बैठा है इन्हें अपना तखल्लुस रखिया औरंगजेब। औरंग कहिंदे ने तखत नूं वड्डा तखत, जेब कहिंदे ने शिंगार नूं। औरंगजेब तखत दा शिंगार, तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा, ये उसने अपना तखल्लुस रखिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत जफरनामे राही लिखते ने औरंगजेब न जेबन तुरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब न बायद फरेब, ऐ मुइनुद्दीन ए नाम तेन शोभा नहीं देता, तू औरंगजेब नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तख्त से बैठता है तख्त बदनाम हो जाता है, तख्त भ्रष्ट हो जाता है, तख्त मैला हो जाता है, तू औरंगजेब नहीं है। जुर्रत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तुरा तर्क ताजी ब मकरो राया, मरा चारा साजी ब सिदको सफा, न जेबत तो रा नाम औरंगजेब के औरंगजेब न बायद फरेब। महाफरेबी है तो झूठा है, चलाक है। हमो मर्द बायद शबद सुखनवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर, तेरी जबान ते कुछ और है, तेरे दिल दे कुछ और है। तू ते मनुख ही नहीं है, तू ते इंसान ही नहीं है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ए जुर्रत उसनों जो है ऐसा आख है। औरंग वड्डा तख्त, छोटा उन्हों मसनद कहते हैं, पंजाबी शब्द बन गया मसंद। जिन्हों गुरु अमरदास जी महाराज ने मसनद बख्शी सी, मंजी बख्शी सी, तख्त बख्शिया सी, इन्हों की पूजा प्रतिष्ठा इतनी होई, संगत ने मान सम्मान इतना दिता, इन्हों को हजम ना होया। इन्होंने खुद गुरु होण दा नारा लाया और भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं अगां चल के ये मसंद प्रथा खत्म करनी पई। हुण मसंद दा ते मतलब है जिन्हों तखत मिलिया है, लेकिन सिख जगत दे च अज गाल बन गई, किसे नूं गाल कढ़नी होवे ते कह दिता जांदा है मसंद है, निरा ही मसंद है। लेकिन मसंद दा मतलब है छोटा तखत, जिससे बैठे हैं ए छोटा तख्त। गुरु अमरदास जी महाराज ने तख्त प्रचारकों के लिए बनवाए सन, बे संगत उची थां ते बैठ के गुरबाणी की व्याख्या करन, गुरबाणी सुनान, ताकि संगतां नूं दिखाई देन ਤੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗ ਸੁਲੇਮਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਹ ਔਰੰਗ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰੰਗ ਸੁਲੇਮਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅਜਾਜ ਮਸੀਹਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ੇ, ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीर्त साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नूं जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती कोई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। किन्ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने, इनू इस तरह बालां के जिवें तंदूर दे विच लकड़ां बलदियां ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका, जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावां, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी पटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी कोई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वर्तने हैं कि प्यार ही परमात्मा है,

एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जेड़ी वक वक जीवां विच परमात्मा ने वक वक तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिमें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कह लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जेड़ा है वह सरोवर विच है ते किरण सूरज जेड़ा है वह आसमान विच है। दोनां दा करोड़ा माइल्स दा करोड़ा को दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ा मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक एहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती, जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ा को दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। वह किहड़ी ताकत है, वह किहड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े हुए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनों दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच पैदा हुए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा आसमान ते एक टिक उहनू नजर टिका के देख दिए। चंद्रमा जदों ए अपनी थां सारी रात बदलता है, अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्नू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावें शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है।

0: समाया
1: वहाँ कसे प्याप तमाया
0: आप उसको आप आदेश
1: गुरु का ना ही प्रवेश
0: जय एक एक एक भगवंता
1: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जय आपन आप पतियारा
1: जय कौन कथा कौन सुनने हारा
0: बहु बेअंत ऊचते ऊंचा
1: नानक आप उसको आपे पहुँचा
0: जय आप रतियो प्रपंच आकार
1: गुण मैं की नो विस्तार
0: पाप कौन तह पई कहावत
1: ओ नरक को स्वर्ग विशावत
0: काल जाल माया जंजाल
1: मैं मोह परम पै भार
0: सुख मान अपमान
1: अनक प्रकार की उपख्यान
0: अपन खेल आप कर देख है
1: खेल संकोच तो नानक एक
0: जय अवगत भगत है आप
1: जय पसरे पसार संत प्रताप
0: तुम पाप का आपे धनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आपे कौतक करे अनब जोज
1: आपे रस भोग निर्जोग
0: जिस भाव है तिस आपन नाई लावे
1: जिस भाव है तिस खेल खिलावे
0: बेशुमार अथाह अगन अतुल है
1: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक
0: दी जंत्र के ठाकुरा आपे वर्तन हार
1: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार राष्ट्रपति
0: आप कथा आप सुनने हार
1: आपे एक आप विस्तार
0: जात भाव है तं श्रेष्ठ उपाय
1: अपने भाने लय समाये
0: तुम ते भिन्न नहीं किश होए
1: आपन सूत सब जगत परोए
0: जाको प्राप्ति आप बुझाए
1: सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदर्शी तत् का बेता
1: नानक सगल सृष्टि का जेता
0: जी जंत्र सबका कै हाथ
1: दीन दयाल अनाथ को नाथ
0: जिस राख तिस कोई न मारे
1: सो मुह आज समनो बिसारे
0: इस तक अवर कहां को जाए
1: सब सिर एक निरंजन राय
0: की युक्त जान के सब हाथ
1: अंतर बाहर जान साथ
0: गुण निधान बेअंत अपार
1: नानक दास सदा बलहार
0: पूर्ण पूर रहे दयाल
1: सब ऊपर हो वित कृपाल
0: अपने कर्तव्य जाने आप
1: अंतर जामी रहे व्याप
0: प्रत पालय जी अनुभव भांत
1: जो जो रचियो सो तिसे त्याग
0: जिस भावे तिस लय मिलाए
1: भगत करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मान्या
1: करन हार नानक एक जाने
0: जन लागा हर एक नाई
1: जिसकी आस न वृथी जाए
0: सेवक को सेवा बन आई
1: हुकम बूझ परम पद पाई
0: इसके ऊपर नहीं भी चार
1: जाकर मन बसया निरंकार
0: बंधन तोड़ भय निर्वैर
1: हर दिन पूजा गुरु के पैर
0: ए लोक सुखी है परलोक सुहेले
1: नानक हर प्रभ आपे मेले
0: साथ संग मिल करो आनंद
1: उनका वो प्रभ परमानंद
0: राम नाम तत् करो विचार
1: दुर्लभ देखा करो उदार
0: अमृत वचन हर के गुण गाओ
1: प्राण तरन का यह स्वभाव
0: आठ पैर प्रभे खो नेरा
1: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा
0: सुन उपदेश हृदय बसावो
1: मन इच्छे नानक फल पावो
0: हलत पलत तो लेहो सवार
1: राम नाम अंतर उतार
0: पूरे गुर की पूरी दिखिया
1: मन बसे ते साच परीखिया
0: मंत्र नाम जप होले बुलाए
1: दुख दर्द मन ते पाओ जाए
0: सच व्यापार करो व्यापारी
1: दरगह निभे खेप तुम्हारी
0: एक काटे कर रखो मन माहे
1: नानक बहुर न आवे जाहे
0: इससे दूर कहाँ को जाए
1: उबरे राखन हार ते आए
0: निर्भव जपै सकल भव मिटे
1: प्रभ कर पाते प्राणी छुटे
0: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख
1: नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटे अहंकार
1: इस जन को कोई न पहुँचन हार
0: सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा
1: नानक ताके कार्ज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट
1: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: भान सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामी पुरख प्रधान
0: जिस मन बसै सुहोत निहाल
1: ताका निकट न आवत काल
0: अमर भये अमरा पद पाया
1: साध संग नानक हर त्याया श्लोक
0: ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश
1: हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी
0: संत संग अंतर प्रभ डीठा
1: ना प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समिग्री एक घट माहे
1: अनक रंग नाना दृष्टा है
0: नौ नदी अमृत प्रभ का नाम
1: यही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाद अनहद तहनाद
1: कह न जाइए चरित विस्माद
0: दिन देखिया जिस आप दिखाए
1: नानक ते दर सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत
1: घट घट व्याप रहा भगवंत
0: धर्म माहे आकाश पयाल
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
0: अंतिम पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: संतर माहे
1: चार कुंट दिशा समाहे
0: इसके भिन्न नहीं को ठाओ
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद पुराण सिमरत मह देख
1: सस्य सूर न खतरे में एक
0: वाणी प्राप्ति सबको बोले
1: आप डोल न कब हूँ डोले
0: सर्व कला कर खेल है खेल
1: मोल न पाइये गुण है मोल
0: सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत
1: धार रहे स्वामी ओत पोत
0: गुर प्रसाद भ्रम का नास
1: नानक तन में एहो विश्वास
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने शुभ वचन
1: सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिसकी एह रह
1: सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो हो सोई सुख मान
1: कर्ण करावन हार प्रभ जान
0: अंतर बसे बाहर पियो ही
1: नानक दर्शन देख सब मोही
0: आप सत किया सब सत
1: जिस प्रभ ते सगली उत्पत
0: जिस भावे ता करे विस्तार
1: जिस भावे ता एकंकार
0: अनक कला लखी नह जाए
1: जिस भावे तिस लय मिलाए
0: कवन निकट कवन कहिया दूर
1: आपे आप आप प्रभुर
0: अंतर्गत जिस आप जनाए
1: नानक तिस जन आप बुझाए
0: सर्व भूत आप वरतारा
1: सर्व नैन आप एकन हारा
0: सगल समग्री जा का तना
1: अपन जस आप ही सना
0: आवन ਜਾਨਿ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
1: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ
0: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੇ
1: ਜੋ ਕਿਛੁ

श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद भेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रंगे फेरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद शिव तुष्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर।

पौड़ी बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुट पजा खानी सेक जा सोमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो करता

पुना प्रवाण लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में है छुट्टे है प्राण

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर परिये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड़िए खास परिये है जेते वर्ष वर्ष परिये जेते मास परिये जेती आर जा परिये जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत ही सत्या ते तो लव्या

दुख दारू सुख रोग पे जा सुकाम न होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जो जोत में जात अगल कला भरपूर रहा, तू सच्चा सहसू

0: तुवा पूरा तपे का सत गिरथ बाहो कलजुगरा थगन का कूड़ा गैर रुथवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में ऐसा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमलकिया
1: चारे वेद हो सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए भी फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दर के अंतर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पल के थुक पड़े निदारी तग ना प्यारी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना की वे तग आया पे बते।

ओडिशा महोदयाल कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

थोड़ी चक्कर लगे चक्रे जो चले खसम पाए हुरमत तिसनो अगलियो वजो पी दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैर अंदर पाए बचो गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस कहिया शाबाश नानक हुक्म ना चले नाल कसम चलाया।

श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवें कवि बाच बेनती चापई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह। हमारा अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सब

रज सहतज कीने उत्पद खान बाहुर रच दीने कहू फूल राजा बैठा कहू सिमट पह शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाया चंग पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो असिख बार असिख संगरो दुष्ट जित उठवत उत्पाता सकल मलेच करा रण काता जिया सतुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो वह मरे पुरख जावन।

संबत सत्रह सहस पण जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रावारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जावते तुमरे तवते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत।

सेव है कर्म चढ़ाओ भी निरंजन मंचाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कम लंघाए पार कुल चरख चके चक थल वार ओले बहुत अनंत लाटू मधानी अनगा पंखी पहुंचे लै नसा सुए चढ़ पोए जंत नानक पहुंचे गंत अनंत बंधन बंद पोए सोए पै करत नच सब कोए नच नच हसे चले से रोए उड़ न जाई सदना हो है।

पहयो तत् स्यों तत् मलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत छतर गुर राम है दियो गुर रामदास दर्शन परस